0: ओम श्री दीप नारायण भगवान की जय। श्री श्री देव पुरुष महादेव की जय।
1: श्री दीप नारायण भगवान की जय। देव पुरुष महादेव की जय। सद्गुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय। माधवानंद जी भगवान की जय। सत सनातन धर्म की जय।

ओम बोले श्री दीप नारायण भगवान की जय। श्री विश्वगुरु महामंडलेश्वर परमहंस श्री स्वामी महेश्वरानंद जी गुरुदेव की।

0: श्रीदीप नारायण भगवान की जय, श्री सत गुरुदेव की जय।
1: अलकपुरी जी महादेव की, माधवानंद जी भगवान की, सत्य सनातन धर्म मात पिता गुरुदेव की, ओम शांति शांति शांति।

0: भगवान की जय। श्री देवेश्वर महादेव
1: की जय।
0: स्वामी मानवानंद जी भगवान
1: की जय।
0: विश्व गुरु महामंडलेश्वर स्वामी महेश्वरानंद जी गुरुदेव
1: की जय।

कीर्तनेम भगवान की जय। श्री श्री विश्व गुंदा स्वपरम स्वामी महेश्वर जी गुरुदेव की जय।

0: भगवान की जय। स्वस्ति प्रजाभ्यां परिपालयन्तं न्यायेण मार्गेण महेन्महेशा गौब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ता सुखिनो भवन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। चतुर्थे भगवान् की जय। आप सब भक्तों की जय। हर नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। So those of you who are traveling, have a safe journey.
1: Akik elutaztok, jó utat kívánok.
0: Those of you who are staying back to a little bit help the organizers clean up and tidy up the place, most welcome to.
1: Hogyha tudtok maradni egy kicsit, segíteni a szervezőknek rendet rakni, akkor szívesen látunk.
0: See you either in Herzowatz or in Rijeka or in Split or in Mostar or in Vienna or in India.
1: Találkozunk Karlovácsban, Mostarban, Rijekában, Bécsben vagy Indiában.
0: Hari Om. Much love, many blessings from Gurudev.
1: Hari Om, sok szeretet, sok áldás Gurudevától.
0: See you sometime, somewhere soon.
1: Valahol hamarosan találkozunk.
2: Hari Om, dear Parampuja, Sri Mahamandaleshwar, Swami Avatar Puriji

0: भगवान की देवादिदेव देवेश्वर महादेव की सद्गुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की देवादिदेव देवेश्वर भगवान आराध्य भगवान श्री दीप नारायण महाप्रभु जी की माता पिता गुरुदेव की सत्य सनातन धर्म की जय। गुड इवनिंग,
1: दोबरी वेचर,
0: ऑल डियर ब्रदर्स सिस्टर्स, ऑल ब्लेसिंग ऑफ आवर गुरु परंपराज।
1: Všetci moji drahí bratia, milé sestry, mnoho

0: जय महामतुषार स्वामी अवतारपुरी जी की जय महामतुषार श्री विवेकपुरी जी की जय
1: स्वामी योगेशपुरी जी महाराज की
2: जय

ईश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अनंत ब्राह्मण्ड के रचयिता, सृष्टि के पालनकर्ता, घटघट में रहने वाले परब्रह्म परमात्मा को शत शत नमन। आराध्य श्री गुरुदेव के शुभ चरण कमलों में कौटि कौटि साष्टांग दंडवत। धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं, आज का दिन बड़ा ही शुभ दिन है कि हम यहां इस आश्रम के अंदर सत्संग में आए। ये हमारे पूर्व जन्म का अच्छा कार्य, अच्छा कर्म यहां लेके आया है। ब्लेसेड सेल्फ, ऑल डियर वंस राउंड द वर्ल्ड, द ब्लेसिंग इज कमिंग टू यू फ्रॉम होली भारत, ब्यूटीफुल कलरफुल राजस्थान, पिंक सिटी, जयपुर के जोधपुर, जयपुर। वेलकम। टुडे सब्जेक्ट इज द नाद योग। वेदा से नाद रूप पर ब्रह्मा, वेदों में कहा गया है कि नाद रूप पर ब्रह्म, अगर परब्रह्म परमात्मा को देखना है कि वो कैसे हैं, तो उनका और कोई स्वरूप नहीं है, केवल नाद। द वाइब्रेशन, द रेजोनेंस, अनंत ब्राह्मण्ड, सहस्त्र सूर्य, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ सन सिस्टम्स, एंडलेस स्टार्स एंड मून्स, ऑल इज क्रिएटेड आउट ऑफ द वन, द साउंड। शून्य काश, पूरे ब्रह्मांड की रचना, जिसके अंदर हजारों लाखों लाखों सूर्य मंडल हमारे ऋषि मुनियों ने कई लाखों करोड़ों वर्ष पहले अपने ज्ञान शास्त्रों के अंदर लिखा है, बताया है। यहां तक कि एक योगी की चेतना 14 लोक 2100 ब्राह्मण्ड, ये जो 7 लोक बताए गए हैं, इनके परे

2001 सूर्य मंडल है वहां तक योगी की चेतना पहुंच सकती है। उसके आगे जाने के बाद में वो स्वयं जो है वो फिर वापस नहीं आएगा। 14 लोक 21 ब्रह्मांड, द 14 डिफरेंट वर्ल्ड्स एंड 2100 सन सिस्टम्स अबव दैट द कॉन्शियसनेस ऑफ द योगी कैन एक्सपांड एंड टिल दैट द अवेयरनेस ऑफ इन दैट कॉन्शियसनेस कैन रीच एंड कम बैक एंड गिव द नॉलेज टू अस। मॉडर्न साइंस ट्राई टू कम टू द मून, ट्राई टू गो टू द जुपिटर और द मार्स, विच इज विद इन अवर सन सिस्टम, बट हाउ द योगीज वेंट देयर, दैट इज द एविडेंस ऑफ द हिंदुस्तान, भारत की संस्कृति और भारतीय योगी मुनि ऋषि मुनियों की शक्ति और ज्ञान। और वो जो कहा गया है कि एविडेंस विल नेवर डाई, कोशिश करते हैं लोग, हमारा धन चुराने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन वो उनके पेट में पचता नहीं है। ऑल दिस दैट टाइम कॉल्ड द शून्याकाश, अवॉइड डार्क ब्लू स्पेस, नथिंग इज इनसाइड, नथिंग। देयर अगेन शास्त्रा सेड, वेदा सेड, एको हम बहुश्यामी, आई एम वन एंड नाउ आई विल मल्टीप्लाई माई सेल्फ। क्या भगवान की इच्छा होती है? क्या भगवान इच्छा करता है कि मैं एक हूं, अनेक में बनूंगा? वो कौन है कहने वाला? देखा किसी ने? सुना किसी ने? लेकिन ऋषि मुनियों का कहना है, वो जो है जिसको हम कहते हैं कि भगवान ने कहा या जिसने कहा कि मैं एक अनेक में बनूंगा, वो एक जो है वो एकाकार, निराकार, निरंजन, नित्य, चिदानंद रूप स्वरूप, संपूर्ण ब्रह्मांड की चेतना, अनंत की चेतना, हरि अनंत, अनंत हरि कथा। दैट टाइम इन एंडलेस देयर अवेक इज पूर्णा, ए वाइब्रेशन, ए रेजोनेंस, दैट्स कॉल्ड द साउंड, एंड दैट साउंड वी कॉल ओम, अकार, उकार, मकार। थ्रू दैट रेजोनेंस, वॉट एवर इज विजिबल इन दिस यूनिवर्स, वॉट एवर इज अनविजिबल बट यू कैन फील इन दैट, ऑल इज क्रिएटेड बाय दैट वन बिंदु, वन आकार, नाद बिंदु कला, नाद बिंदु, उस बिंदु से शुरुआत होती है, वह बिंदु अभी तक है। जिस समय आप मां के गर्भ में प्रवेश करते हो, उसमें सबसे पहला एक बिंदु केंद्र बनता है, वो हमारी नाभि है, और उसी के पास में आंत बनने लगती है, फिर रीढ़ की हड्डी बनती है, फिर दूसरे अवयव और अंग शरीर के जो है बनते हैं। लेकिन बिंदु तो वो है नाभ, और वो जो है मां का गर्भ जो है वो संपूर्ण ब्रह्मांड है, मां की कोख जो है वो संपूर्ण आकाश तत्व है, और वो जीवात्मा जो है वो चैतन्य, उस परमात्मा का स्वरूप चैतन्य। तो जब कहा जाता है कि भगवान विष्णु की नाभि से कमल निकला, वो कमल ये है कि विष्णु जल के अंदर रहता है, और वो जल के अंदर
वही चेतना जो कि मां की शक्ति है वो रक्षा करना। भगवान विष्णु हम करते हैं, क्या करते हैं? रक्षा। ब्रह्मा इज अ क्रिएटर एंड विष्णु इज द प्रोटेक्टर एंड शिवा इज द लिबरेटर, नॉट अ डिस्ट्रैक्टर, बट ही डिस्ट्रॉयज द नेगेटिव। शिवा इज नॉट अ डिस्ट्रैक्टर। तो वह जो मां के शरीर के अंदर जो गर्भ बढ़ता है वही कमल है, और वही कमल जो है जब जन्म होता है बच्चे का अभी भी उसी बिंदु से जुड़ा हुआ है, उस अनंत मां अंदर अनंत है। उपनिषद कहते हैं कि सबसे पहले भगवान मां है, मातृ देवो भव, वही कमल है, वही कमल बढ़ता है, और वही उसकी कई अलग से हमारे योग के अंदर वही ईडा पिंगला सुषुम्ना है, वही नाड़ी है, वही कमल खुलता है, ब्रह्मा वही ब्रह्म ज्ञान होता है, ब्रह्म जाने ते ब्राह्मणा। उसी नाद का स्वरूप जो है वो नाद, वो रेजोनेंस, दैट साउंड इज स्टिल रेजोनेटिंग कॉन्स्टेंटली बियॉन्ड मैनी सन सिस्टम्स एंड इन आवर ईच एंड एवरी सेल्स ऑफ द बॉडी। Therefore, Veda said, यथा ब्राह्मणे तथा पिंडे। जो ब्राह्मण के अंदर है वो हमारे शरीर के अंदर है, और जो हमारे शरीर में नहीं है वो बाहर नहीं है। हर एक सेल्स हमारे बॉडी के जो है, हर एक अवयव हमारे शरीर के है, उसके अंदर में नाद है। वो सोनोग्राफी करते हैं ना साउंड के साथ में, हृदय की आवाज सुनाई देती है। एक मिनट में कितना लीटर हृदय खून फेंकता है, या डॉक्टर साहब बैठे कार्डियोलॉजिस्ट, उसने रॉन्ग मत बोलना। एक मिनट में 5 लीटर खून का दौड़ा करता कराता है हमारा ये हार्ट। ओ तो 24 घंटे में कितना होगा भाई? पड़ियोड़ा मैं बताओ, मैं तो पड़ियोड़ी को नहीं हूं। उस हार्ट का आपने कभी ध्यान रखा? कभी आपने हार्ट को कहा कि आप कैसे हो, आपको कैसा खाना चाहिए, मैं क्या खाऊं जिससे आप मजबूत और खुश रहो? हम हमारी जीवा के मुंह के स्वाद के कारण हमारे कोई शरीर के अवयवों का ध्यान नहीं रखते हैं, इसीलिए हम दुखी हैं। कभी आपके हार्ट को कहा कि तुम एक दिन विश्राम कर लो? मामला पूरा। तो अरे उसको विश्राम के लिए नहीं तो उनकी थोड़ी सहायता तो कर लो। आपका सबसे अच्छा सेवक आपका जो है वो सेवक है हमारा हार्ट। चलो नाद, इसीलिए हमारे 4 वेदों के अंदर एक और 5वां वेद है जिसका क्या नाम है? गंधर्व वेद। गंधर्व वेद जो है नाद योग है, और उसके अंदर में जो है ये नाद हमारे शरीर में जो प्रकट हुई है मानव के जीवन में, मानव की बुद्धि के द्वारा और मानव योग साधना करके उसको पहचान सकता है, तब भगवान का साक्षात्कार होता है। जब तक नहीं होता, नहीं तो नहीं होता है। एक छोटा दृष्टांत, देयर इज वन स्मॉल स्टोरी। God had a beautiful garden, very beautiful garden. भगवान के बहुत सुंदर बाग था, बहुत अच्छा, और भगवान के वहां अच्छा निवास था, वहां भगवान रहते हैं। Every morning सुबह उठ करके भगवान अपने बगीचे में घूमने को जाते थे। Early morning, God get up and walk through the garden, and he touches each and every blossoms, flowers, plants, trees, and all जितने भी वनस्पति हैं भगवान उनके हाथ लगाते हैं, भगवान देखता है, भगवान चलते हैं, और जितने भी पौध हैं, जितने पौधे

हैं, जड़ी बूटियां हैं, वृक्ष हैं, सभी भगवान को कहते हैं गॉड आई लव यू, गॉड आई लव यू, भगवान मैं आपसे प्रेम करता हूं, हे प्रभु हे प्रभु। और भगवान भी कहता है कि यस माय डियर आई लव यू आई लव यू। भगवान भी हमारे से प्यार करते हैं। तो वहां एक बांस था, है भगवान के बगीचे में सभी हैं। सो देयर वॉज ए बंबू एंड बंबू वॉज इन सम कॉर्नर। तो बंबू भी दूर से कहता था बांस के, भगवान मैं आपसे प्यार करता हूं। भगवान आते कि हाँ माय डियर बंबू आई लव यू आल्सो वेरी मच। भगवान उस बांस को भी टच करते थे। फिर भी हमारे कुछ महापुरुषों ने कहा है कि बांस उगा भूमि पर और दुखी हुई बंदराए, एक दिन ऐसा आएगा सबको देगा जलाए। जब कहीं बांस उगता है तो पूरी वनस्पति दुखी हो जाती है, क्योंकि बांस हवा से आपस में खींचेगा और आग होगी सबको जला देगा। बांस के अंदर तीन अवगुण है। बांस चाहे अपने चंदन के पास हो, बांस चाहे गुलाब के फूलों के पास बीच में हो, वो सुगंध नहीं ले सकता है, क्योंकि उसके अंदर अवगुण है। एक तो अवगुण वही है कि वो इतना कड़ा है कि उसके अंदर से कुछ पार नहीं होता है। वो कड़ापन यानी अपना अहंकार। ज्यो पद बढ़ता है तो मद भी बढ़ता है। ऐसे जो बड़ा हो गया, हमारे समाज में अगर कोई बड़ा अफसर बन गया और कोई हमारे समाज का कोई गरीब जाएगा कि साहब माने कोई नौकरी है, बाद में फिर बात करेंगे, अरे भाई सहायता तो कर। तो हमारे ऋषि मुनियों ने क्या कहा इसके लिए, जो बड़ा हो गया, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लगे अति दूर। अरे समाज में कोई इतना बड़ा हो गया और गरीबों की हमारे समाज की सेवा नहीं करता है, अरे तू कब तक रहेगा, चार दिन रही चांदनी आखिर अंधेरी रात। पद का मद तुम कहां तक लेके चलोगे। गुरु नानक साहब कहते कि सब दिन हो तन एक समान, लेकिन फिर वो तुरंत गुरु नानक साहब सेड कि एवरी डे इज ए गोल्डन डे, सभी दिन स्वर्ण दिन है। किसके लिए, संत के लिए। संत कपड़ा पहनने से नहीं होता, रंग बनाने से नहीं होता है। संत की क्वालिटी हृदय के अंदर होती है, विचारों के अंदर होती है, दया के अंदर होती है। संत वो बैठा है और कोई आ गया तो कहेगा भाई रोटी खा के जाना, ऐसे मत जाना कि नहीं समय नहीं है, समय नहीं दे रहा, ये तो प्रसाद ले जा खाते जाना बेटा, वो संत होता है। लोग आ गए अभी क्या करें, चलो आ गए, कैसे आए भाई, कोई काम है कि नहीं, बस जाओ। वो संत नहीं होता है, खिलाओ, जितना खिलाओगे उतना तुम्हारा तप बढ़ेगा, तुम्हारी शक्ति बढ़ेगी, आध्यात्मिकता बढ़ेगी। तुलसी दास जी कहते हैं कि तुलसी कर पर कर कर, अरे कि हाथ के ऊपर हाथ करो तुम देते जाओ, तुलसी कर पर कर कर, पर कर कर न कर, नीचे कर मत करना। तुलसी कर पर कर कर, पर कर कर न कर, तहां दिन पर कर कर उस दिन मरण कर, है कि नहीं। मांगन मरण समान है, जो कोई मांगन जाए उनसे पहला वो मरा जिसके मुख से निकला ना आए। वो संत की पहचान होती है, चाहे ग्रस्त में भी हो तो भी देना होता है, दया होती है, और वो माताओं के अंदर जाता होती है। दो तीन आदमी एक साथ रह गए तो कोई आते तो देखते घर के अंदर को जाने, भूकंप हुआ अभी, पेंट कहीं पड़ा, समझ वो मोजा कहीं पड़ा है, वो पड़ा है, आएगा पानी पियोगे सा, अच्छा पानी लाता हूं, दूसरा क्या कहीं। और जहां बहने हैं माताएं हैं, घर की शुद्धता है, कोई भी मेहमान आता जल पिलाएंगे कुछ ताके, बिना कहे ही पूछते नहीं पानी पियोगे,
तो कहीं दारू पाए तो भाई सही बात है कि नहीं। नारायण नारायण नारायण। तो बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर और पंथी को छाया नहीं फल लगे अति दूर। उसका कड़कापणा जो है वो उसका स्वाद नहीं ले सकता है। दूसरा, मान लो किसी रूप से अगर सुगंध अंदर चली भी जाए तो अंदर में है पोल, पोल है कि नहीं, अब वो पोल में कहां रुकेगी वो सुगंध, वो तो अच्छा वो पोल है तो वो सुगंध आगे जाना चाहती है लेकिन उसके अंदर कपट की गांठ है, गांठ है कि नहीं, बांस में कपट की गांठ, बीच में है पोल। और अगर उसको कहे तो तेरे अंदर तो पोल है, थोता चढ़ाने बाजे घना, भरा तो जबके नहीं जबके सोई आधा, घोड़ा तो भूके नहीं भूके सोई गधा। अगर इतना कह दिया तो उसको क्या होता है, गुस्सा आता है। तो जब वो बांस अपनी जवानी पे आ जाता है तो हवा आती है तो रगड़ता है, घिसता है तो उसमें आग लग जाती है, सब वनस्पति को जला देगा। ऐसा हमारे समाज में, हमारे समाज के अंदर पैदा होए तो क्या करेंगे उसे। बांस उगा भूमि पर दुखी हुई वनराय, एक दिन ऐसा आएगा सबको देगा जलाए। और आप जैसे धर्मात्मा, आप जैसे संत आत्माएं, आप जैसे जिनके माता पिता की पूर्ण आशीर्वाद है, गुरुदेव की पूर्ण आशीर्वाद है, आप अभी यहां बैठे हो वो आपके पूर्वजों की कमाई है, अभी खा रहे हो वो पूर्वजों की कमाई है, अब तुम तुम्हारे बच्चों को क्या दोगे वो फिर तुम्हारी कमाई है। तो कहा कि चंदन उगा भूमि पर और खुशी हुई वनराय, एक दिन ऐसा आएगा कीमत देगा बढ़ाए। जहां चंदन उगने लगता है तो पूरे फॉरेस्ट उसकी रक्षा हो जाती है, यहां पेड़ नहीं काटना यहां चंदन उग रहा है। तो ऐसे हम चंदन चाहते हैं हमारी समाज के अंदर, माता जने तो ऐसा जन के दाता के शूर, नहीं तो रहिए बांजरी मत गमाइए नूर। क्योंकि तीन सजावट देश को, हमारे इस भारतवर्ष की शोभा हमारी माताओं के द्वारा जो संतान पैदा होती है उसकी है। तीन सजावट देश को शक्ति संत और शूर, और तीन लजावट देश को कपटी कायर और करूर। बात चल गई थी आज कहीं कि हमारे यहां के डॉक्टर अमेरिका जाते तो उनको फिर स्टडी करने लेनी पड़ती है, लेकिन आप लोगों को पता नहीं है कि अमेरिका हमारे यहां के डॉक्टरों को कितने पैसे देकर के, फर्स्ट क्लास का टिकट देकर के 5 दिन के लिए भी बुलाते हैं। कितने डॉक्टर्स जाते हैं हमारे मुंबई से, अहमदाबाद से, राजस्थान से, वहां की यूनिवर्सिटीज और वहां के डॉक्टर्स उनको बुलाते हैं। क्योंकि भारत ज्ञान है, भारत ज्योति है, भारत विश्व का गुरु है, हर एक फील्ड में, आध्यात्मिकता ही नहीं हर एक जगह में। आविष्कार भारत में जो किया हुआ है साहित्य कहीं होगा, अब जो है ये टेक्नोलॉजी जो है, लेकिन देखा जाए तो टेक्नोलॉजी में भी ब्रेन जो है हमारे भारतीयों का, ऐसा ब्रेन कम ही बार मिलेगा। आज से 15 साल पहले जर्मनी ने वीजा फ्री कर दिया था और हमारे अच्छे से इंजीनियरों को वहां काम दे रहे कि आप आइए और हमारे लोगों को सिखाइए। यू नो दैट, आपको पता नहीं होगा। तो भगवान अपने बगीचे के अंदर जा रहे हैं और सभी पेड़ पौधों को हाथ लगाते हैं कि कैसे हो बच्चा, कैसे हो बेटी, कैसे ठीक हो। बांस कहता है कि भगवान मेरा भी प्रणाम स्वीकार करिए और ऐसी कृपा कीजिए कि मुझे भी आपके बगीचे में रहने की जगह दीजिए। भगवान कहते हैं कि ये बांस तू मेरा बड़ा प्यारा है, तू मेरे बगीचे में हमेशा हमेशा रहेगा, मैं सबसे ज्यादा तेरे से प्यार करता हूं, बोल। फिर भी कपटी के मन में तो कपट रहता ही है, डाउट कभी आउट नहीं होती है।
एक दिन आया, भगवान सुबह उठ करके दोनों हाथ कमर के पीछे, बांस का कलेजा जो हार्ट बीट जो है वो 165 पे पहुंच गई। बांस कहता कि भगवान आज आपके हाथ, आपके हस्त कमल हमेशा आशीर्वाद के रूप में आता है, आज पीछे कमर पे क्यों रखे, पीठ पे चल के क्यों रखे हो? भगवान कहते हैं कि बांस आज मैं तेरे को कुछ दर्द पहुंचाऊंगा। बांस रोने लगा, मैंने क्या गलती की प्रभु, मैंने क्या गलती की, क्यों क्या करोगे प्रभु, यहां से निकाल दोगे? कि नहीं नहीं, मेरे बगीचे में तेरा हमेशा हमेशा के लिए तेरी जगह है, लेकिन आज मैं तेरी भुजा काट दूंगा। मेरी भुजा? भगवान आप तो सर्वशक्तिमान हैं, आप चाहे सो कर सकते हैं, लेकिन इतना तो मुझे बता दी कि आप मेरी भुजा क्यों काट रहे हो? भगवान कहते कि हे बांस, मुझे तेरी आवश्यकता है। मेरी आवश्यकता आपको? हां बेटा, जो कार्य मैं नहीं कर पाता हूं वो कार्य तुम कर पा सकते। वो कौन सा है भगवान? कि बेटा, मानव जाति का हृदय पत्थर की तरह हो गया है और उसको मक्खन की तरह इतना मुलायम करना है, वो मैं कैसे करूंगा? भगवान आप ही कर सकते हैं। कि नहीं बांस, तुम ही कर सकते हो बेटा, तो मुझे और समझाइए मैं कैसे करूंगा। मेरा हाथ काट दीजिए, आप दोनों ही काट दो, आप मैं आपके अधीन हूं। कि बेटा, मैं तेरे इस भुजा का एक सुंदर बांसुरी बनाऊंगा और उसके अंदर मैं स्वयं मेरे प्राणों की आहुति दूंगा, लेकिन मेरे प्राणों की आहुति की जो ध्वनि निकलेगी वो ब्रह्मांड के अंदर जो कहा है नाद रूप पर ब्रह्म, वो प्रकट होगा और हर एक के हृदय के अंदर जो कठोरपन है वो मिट जाएगा और कोमल हृदय हो जाएगा। बोल सतगुरु देव की। तब से ये बांसुरी बनी भाई, ये भगवान की बांसुरी, ये भारत का असली वाद्य जो है हमारे संस्कृति का, इसीलिए भगवान के हाथ में बांसुरी रहती है, सरस्वती माँ के हाथ में ग्रंथ रहता है, ब्रह्मा जी के हाथ में वेद रहते हैं। काट दिया, बांसुरी बन गई। भगवान नित्य नियम से हमेशा उस बगीचे के में फिरते हैं। एक दिन फिर ऐसे हाथ रख के भगवान आ रहे थे, बांस ने सोचा कि आज और कुछ न कुछ दाल में काला है, भगवान आज और क्यों हाथ आप अपनी पीठ पे रख के आ रहे हो? कि बेटा, आज मैं तेरे को बहुत भयंकर दर्द पहुंचाऊंगा, मैंने क्या पाप किया, मैं कुछ नहीं करता हूं, केवल आपके दरबार में आपके बगीचे में खड़ा हूं और आपके दर्शन की लालसा है। हां बेटा, लेकिन फिर भी मैं आज तेरा जो मूल जो है, गोड जो है, उसको काट दूंगा। तो भगवान कहते हैं ये तो अब आज कहता क्यों क्या करोगे? कि तेरा जो गोड है वो काट दूंगा। अच्छा, मुझे समझाइए काटने का कारण क्या है? कि बेटा, ऐसा है कि हिमालय की कंदराओं से जहां पानी, बर्फ की चट्टाने पिघलती हैं, वो पानी जो आता है वो वहीं कहीं नीचे चला जाता है और इधर उत्तर की तरफ, पूर्व दक्षिण की तरफ जहां भारत है, अकाल पड़ रहा है, पानी नहीं है, जानवरों को मानव को पीने के लिए पानी नहीं है, तो मैं क्या करूंगा उससे? हाँ बेटा, ये तेरा इतना ज्यादा गोड है ना, उसको काट के मैं जहां पानी की धारा आती है वहां रखूंगा, तो एक चट्टान से दूसरी चट्टान के आगे रखूंगा तो पानी पूरा भारत की तरफ से आएगा, इसलिए तू ही है, दूसरा तो बिखर जाएगा।

0: लेकिन जब अच्छा कोई कलाकार उसको कृष्ण की तरह अपने होठों पे लगातार रहे हैं और भगवान का प्राण जो है मेरे अंदर प्राण संचार हो रहे हैं, हम सभी भगवान की बांसुरी हैं, हमारे अंदर जो प्राण संचार हो रहा है वो उसी पर ब्रह्म परमात्मा का दिया हुआ प्राण हमारे अंदर है। जब तक भगवान हमारे को बनाए रखेंगे हम बना रहेंगे, कोई किसी की हिम्मत नहीं है उसके मुख से बांसुरी हटा के ले जाए। नाद, नाद योग, 10 प्रकार की नाद होती है, 10 इंद्रियों से जुड़ी हुई होती है और 10 इंद्रियों के परे जब नाद खुलती है उसको सोहम कहते हैं, आई एम दैट एंड दैट आई एम। उसी नाद को सुनने के बाद योगी की चित्त वृत्ति का निरोध होता है और फिर वो ध्यान में जाता है, नहीं तो वो बुगला होता है, एक पैर पे खड़ा रहता है, ऐसी दृष्टि से देखता है कि जैसे मच्छी आई या मेंढक खा जाऊंगा। एक पैर पे वो खड़ा क्यों रहता है, एक पैर पे क्यों खड़ा है, दोनों पैर पे खड़ा रहना चाहिए बताओ। एक पैर पे वो इसलिए खड़ा रहता है कि मच्छी आ गई तो दूसरा पैर पानी से निकाल के चलेगा तो मच्छी चली जाएगी, इसलिए रेडी रहता है कि कदम लगा के खा जाऊंगा। जीवों के अंदर भी तो कला तो ही है ना, ये कलाएं जो भगवान ने प्रकृति के साथ जोड़ी हैं अपना जीवन जीने के लिए। तो आज हमारे इस सत्संग के अंदर बहुत अच्छे हमारे कविराज आए हैं, काई ना भूल गयो, ओहो इंद्र दान रत्न, बोलो इंद्र को भी दान दे दे वाला है, वो रत्नों में भी रतन, वो रत्नु आ गए हमारे पास, मेरे रत्नु बहुत चिले, हाँ तो रत्नु के अंदर रत्न होता है और तो कहाँ रहेगा, रत्नों की खान में रत्न निकलता है ना। सो आई वुड इंट्रोड्यूस यू टुडे, आई स्पोक अबाउट नाद योगा and the story many of you know, often I used to tell about the bamboo and the creation of the flute, meaning of the sound and the artist. The artist is a master. Karat karat abhyas pyare jadmat hot sujan, rassi ki avat javat silpar padat nishan. So practice makes perfect. Abhyasa abhyasa kaunte abhyasa. हे अर्जुन, हे कौंती के पुत्र, सन ऑफ द कौंती, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, बट प्रैक्टिसिंग यू कैन डू मैनी मैनी ईयर्स, बट इफ इनसाइड यू डू नॉट हैव दया, योर प्रैक्टिस विल नॉट बी सक्सेसफुल। इसीलिए कहा है, गुरुदेव बिना कार्य न सरे, कोटि उपाय करे कोई चाहे न भव सिंधु तीरे, गुरुदेव बिना कारज नहीं सरे। तो वही बांसुरी, वही नाद जो कि पता नहीं कितने अरबों खरबों वर्षों पहले, युग युगांतरों पहले ये नाद ब्राह्मण से उत्पन्न हुई, वो आज भी हमारे साथ में है, उसको ही पहचानना, भगवान को ही पहचानना है। तो हमारे इंद्रदान जो है वो आपको, ही विल प्ले फॉर अस ए फ्लूट, एंड दिस फ्लूट इज दैट वन विच वॉज मेड ऑरिजिनली बाय मैनी मैनी युगास एगो। बोल श्रीदीप नारायण भगवान की, देवेश्वर महादेव की, धर्म सम्राट सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की, ओम शांति शांति।
1: एक लाइन
0: बोलो, 10 लाइन।
1: First of all, I wish
0: floor is yours. उधर थोड़ा उठने मुंडो कर दो।
1: All of the world.
0: कैमरा की तरफ।
1: I wish to thank a millions of times to Swamiji for, first of all, so profoundly analyzing the creation of the universe and linking it and bringing it ultimately to the flute, which I wish to play before all of you. And I am very thankful to him for inviting me here to deliver this recital of the flute. Thank you, Swamiji.
0: Come on, Babaji. Welcome.

0: ऐसी राग थी
1: ये कोई सारंग राग
0: क्या कोई गीत था
1: सारंग राग थी और उस पे आधारित है गीत छोटी छोटी गईया छोटे छोटे श्री कृष्ण
0: चारण राग है चारण राग
1: नहीं चारण नहीं था सारंग
0: अच्छा सारण
1: सारंग
0: समय कि आप चारण हो इसलिए
1: नहीं नहीं चारण कोई राग
0: अच्छा
1: सारंग राग
0: एक और कोई राग बताओ एक्सप्लेन द पीपल व्हाट यू आर सिंगिंग इन इंग्लिश सो दैट our international audience understands because
1: it was based on rag sarang and it is based upon that I just played the flute about a bhajan about Lord Krishna which says choti choti gaiya chote chote gwal the small cows and so are the cowherds gwale छोटे से हमारे मदन गोपाल सो लॉर्ड कृष्णा टू इज अ स्मॉल पर्सन सिमिलरली सेज दैट घास खाए गईया द काउज ग्रेज ग्रास घास खाए गईया और दूध पिए ग्वाल एंड माखन खाए हमारो मदन गोपाल
0: नेक्स्ट राग कौन सी है क्या गाओगे बताओ
1: अब बाप जी जो निकल जाए उसके बाद में बताऊंगा नहीं, नहीं, नहीं, नहीं पहले बताना बड़ा कठिन है मैं चाहूं वो राग निकल ही नहीं पाती
0: नहीं, नहीं, आप कौन सी राग
1: फिर भी ये भैरवी भैरवी को टच करेगी भैरवी अब भजन कुछ नहीं है बहन जी इतना मैं एक्सपर्ट भी नहीं हूँ सही बात ऐसे ही
0: चिराग चलो
1: भैरवी को टच कर

0: कोई गीत नहीं ऐसे ही।
1: हाँ भैरू जी को बुलाओ आप, काले भैरू को दौड़ो।
0: और उसमें फिर आखिर में भैरवी आधारित है गीत, प्रेम की गंगा बहाते चलो, जोत से जोत जगाते चलो, उस पे आ जाऊंगा फाइनली।